0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की।

पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के प्रथम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी का वे अवश्य आनंद लें, किंतु अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को कदापि न भूलें। वस्तुतः 12वां अध्याय उपसंहार से पहले उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का प्रयास किया है। वह याद दिलाता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन से आता है, शेष कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि वृद्धावस्था आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की ताकत और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सच तो यह है कि सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत एवं अनादि ईश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जवानी में सारी ताकतें अधिक क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मजा ले पाते हैं। इसीलिए जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि यह जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, युवावस्था में विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दे तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करे, तभी उसके लिए वृद्धावस्था और दुर्बलता के दिन आसान बन जाएंगे।

आगे 12वें अध्याय के अंतिम 4 पदों में भी उपदेशक इसी विचार को जारी रखते हुए 4थे और 5वें पदों में कहता है, उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे, उस समय से पहले जब ऊंचाई से चढ़ने पर डर लगने लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। श्रोताओं, इसमें संदेह नहीं कि उक्त पदों में उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है, जब शरीर को संभालने वाले हाथ और बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, चबाना मुश्किल हो जाता है, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है और इंसान आसानी से जाग जाता है, उसे चिड़िया के चहचहाने के लिए रुकना नहीं पड़ता, गाने बजाने में अब अधिक मजा नहीं आता और संगीत की आवाज धीमी पड़ जाती है, जिंदगी में डर बढ़ जाता है, ऊंचाई से डर और रास्ते में आने वाले खतरों से डर लगने लगता है, बादाम के पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं और उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं और चटनी में कोई रुचि नहीं रह जाती, जो लोग कभी फुर्तीले थे वे कमजोर हो जाते हैं, छोटी सी चीज भी बोझ लगने लगती है, जीवन का जोश और सारी इच्छाएं खत्म सी हो जाती हैं, यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है, वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से, यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। श्रोताओं, इस स्थल पर श्रोताओं को याद दिला दें कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहता। फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सुलेमान सही नतीजे पर पहुंचा है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमने लगते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होती है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और कहीं भी इतने अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और इस प्रकार यह उस भयानक भविष्य पर साफ रोशनी डालने का रास्ता खोलती है जो ख्रिस्तीय सुसमाचार के खुलासे से मिलती है। आगे 12वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में उपदेशक कहता है, उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओं, जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर उपदेशक सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद रखें। वस्तुतः चांदी और सोना की यह तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। श्रोताओं, जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को
आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14 ने बृहस्पतिवार को सियेरा लियोन के राष्ट्रपति से जूलियस मादा बियो से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मॉन्सिनियोर मिहाय तबलाज से मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान उन्होंने अच्छे द्विपक्षीय संबंधों एवं स्थानीय कलीसिया के द्वारा समाज को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। बयान में कहा गया कि आप्रवासन, पर्यावरण एवं खाद्य संबंधी आपात स्थिति के साथ साथ अलग अलग सामाजिक चुनौतियों पर भी बातचीत हुई, जिसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा शांति स्थापित करने तथा शिक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया गया और अंत में कई क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14 ने दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को बढ़ावा दिया है कि वे पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतीत्सिया के प्रकाशन के बाद 10 सालों में उनकी कलीसियाओं में जो कुछ भी सामने आया है उसे साझा करें और उनसे उन सवालों और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की अपील की है जिनका सामना आज परिवार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को सभा के आरंभ में पोप लियो 14 ने कहा, परिवार में प्यार पर पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतीत्सिया के प्रकाशन के 10 साल बाद अब समय आ गया है कि इस दस्तावेज से जो कुछ भी सामने आया है उसे दुनिया भर की कलीसियाओं को साझा करें ताकि कलीसिया आज जिन चुनौतियों और कमजोरियों का सामना कर रही है उनमें परिवारों का साथ देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत कर सके। उन्होंने सभा के शुरुआती भाषण में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कलीसियाओं और अलग अलग सांस्कृतिक माहौल से जो कहानियां लाते हैं उनसे इन 10 सालों की एक साझा कहानी धीरे धीरे आकार लेगी जो खुशी और उम्मीद से भरी होगी और इससे हम बाकी मुश्किलों एवं परेशानियों का ईमानदारी से सामना कर पाएंगे। पोप लियो ने 19 मार्च 2026 को अमोरिस लेतीत्सिया की 10वीं सालगिरह के मौके पर वैटिकन में पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग का आह्वान किया था। यह कार्यक्रम 7 से 14 अक्टूबर तक पॉल सिस्टम सभागार में चल रहा है, जिसमें पूर्ण सत्र, सामूहिक कार्य, प्रार्थना एवं कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। सभा पोप लियो 14 द्वारा अर्पित ख्रिस्त्याग के साथ समाप्त होगी और इन दिनों में जो सामने आया है उनसे एक सारांश रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पोप ने कहा कि उनके पूर्वाधिकारियों और कलीसिया ने परिवार एवं विवाह के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जारी रखा। जब महासभा के धर्माचार्यों ने आधुनिक दुनिया में कलीसिया के प्रेरित संविधान गाउडियम एट स्पेस के भीतर विवाह एवं परिवार की गरिमा को रखा, उन्होंने माना कि पारिवारिक जीवन हमारे समय के महान सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों में प्रवेश का एक विशेषाधिकार प्राप्त बिंदु प्रदान करता है जिसमें लोगों के बीच शांति को बढ़ावा देने का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, आज इन सवालों का एक दूसरे पर निर्भर होना और भी साफ हो गया है। पोप ने समझाया कि परिवार एक ऐसे दृष्टिकोण की कुंजी है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों को एक साथ रखता है और ख्रिस्त में एक विश्वव्यापी भाईचारे की खोज से प्रेरित होता है, इसलिए मीटिंग में एकत्रित हुए लोगों की एक खास जिम्मेदारी है। पोप ने गौर किया कि कलीसिया ने परिवार और विवाह के प्रति अपनी प्रेरित चिंता में जिस रास्ते पर चलना शुरू की है उसमें अमोरिस लेतीत्सिया एक अहम पड़ाव है। उन्होंने सभी लोगों को इस दस्तावेज के नतीजे में पिछले 10 सालों में स्थानीय कलीसियाओं के सामने आई कहानियों, नतीजों और सवालों को साझा करने का प्रोत्साहन दिया। इस सभा के लिए 19 मार्च को अपने संदेश में पोप ने इस बात पर जोर दिया था कि असल में ऐसी जगह हैं और हालात हैं जहां कलीसिया सिर्फ लोक धर्मियों और खासकर परिवारों के माध्यम से पृथ्वी के नमक बन सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अमोरिस लेतीत्सिया हमें इस काम और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित करता है। परिवार खुद अपने जीवन के आम ताने बाने में प्यार और निष्ठा, देखभाल और माफी, बच्चों की पढ़ाई, विश्वास को हस्तांतरित करने की अपनी कोशिशों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर ध्यान देने और कई तरीकों से अपने समुदायों तथा समाज की सेवा करके कलीसिया के मिशन में हिस्सा लेते हैं।
इन सभी तरीकों से परिवार सुसमाचार की गवाही देते और कलीसिया के जीवन एवं मिशन में योगदान देते हैं। पोप ने आग्रह किया, पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो हुआ है उसे ध्यान से देखने से हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है कि मसीह इन सालों में अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, और यह भी कहा कि इससे यह देखने में भी मदद मिल सकती है कि उनकी आत्मा आज कलीसिया को कहाँ ले जा रही है। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलाघर 8 से 10 अक्टूबर तक इस्लामाबाद जा रहे हैं। वे वहां राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों तथा देश के धर्माध्यक्षों से मिलेंगे और फैसल मस्जिद जाएंगे। महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड का पाकिस्तान दौरा आज 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और शनिवार 10 अक्टूबर तक चलेगा। महाधर्मदर्श वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। साथ ही वे शांति और सहयोग के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना चाहते हैं। वैटिकन राज्य सचिव के एक्स अकाउंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार महाधर्मदर्श कलाघर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मिलेंगे। वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को अपने दौरे के अंतिम दिन वे इस्लामाबाद में फातिमा की माता मरियम के गिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे फैसल मस्जिद जाएंगे और धार्मिक नेताओं से मिलेंगे। पोप लियो 14वें ने सिस्टर मेरी तेरेस बैरन को सुसमाचार प्रचार विभाग का सहायक सचिव और परमधम पीठे मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अपनी इस नई जिम्मेदारी को 4 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। वे वर्तमान में मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ अपोसल्स के सुपीरियर जनरल हैं। और आज के कार्यक्रम के अनुसार संत पापा लियो 14वें शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए परमधम पीठे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के प्रथम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी का वे अवश्य आनंद लें, किंतु अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को कदापि न भूलें। वस्तुतः 12वां अध्याय उपसंहार से पहले उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का प्रयास किया है। वह याद दिलाता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन से आता है, शेष कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि वृद्धावस्था आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की ताकत और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सच तो यह है कि सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत एवं अनादि ईश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जवानी में सारी ताकतें अधिक क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मजा ले पाते हैं। इसीलिए जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि यह जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, युवावस्था में विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दे तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करे, तभी उसके लिए वृद्धावस्था और दुर्बलता के दिन आसान बन जाएंगे।

आगे 12वें अध्याय के अंतिम 4 पदों में भी उपदेशक इसी विचार को जारी रखते हुए 4थे और 5वें पदों में कहता है, उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे, उस समय से पहले जब ऊंचाई से चढ़ने पर डर लगने लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। श्रोताओं, इसमें संदेह नहीं कि उक्त पदों में उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है। जब शरीर को संभालने वाले हाथ और बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, चबाना मुश्किल हो जाता है, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है और इंसान आसानी से जाग जाता है, उसे चिड़िया के चहचहाने के लिए रुकना नहीं पड़ता, गाने बजाने में अब अधिक मजा नहीं आता और संगीत की आवाज धीमी पड़ जाती है, जिंदगी में डर बढ़ जाता है, ऊंचाई से डर और रास्ते में आने वाले खतरों से डर लगने लगता है, बादाम के पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं और उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं और चटनी में कोई रुचि नहीं रह जाती, जो लोग कभी फुर्तीले थे वे कमजोर हो जाते हैं, छोटी सी चीज भी बोझ लगने लगती है, जीवन का जोश और सारी इच्छाएं खत्म सी हो जाती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है, वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से, यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। श्रोताओं, इस स्थल पर श्रोताओं को याद दिला दें कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहता। फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सुलेमान सही नतीजे पर पहुंचा है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमने लगते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होती है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और

ही उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओ, जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर उपदेशक सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद रखें। वस्तुतः चांदी और सोना की ये तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। श्रोताओ, जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को सियेरा लियोन के राष्ट्रपति श्री जूलियस मादा बियो से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मॉन्सिनियोर मिहाय ताब्लाज से मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान उन्होंने अच्छे द्विपक्षीय संबंधों एवं स्थानीय कलीसिया के द्वारा समाज को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। बयान में कहा गया कि आप्रवासन, पर्यावरण एवं खाद्य संबंधी आपात स्थिति के साथ साथ अलग अलग सामाजिक चुनौतियों पर भी बातचीत हुई, जिसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा शांति स्थापित करने तथा शिक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया गया और अंत में कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14वें ने दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को बढ़ावा दिया है कि वे पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतीत्सिया के प्रकाशन के बाद 10 सालों में उनकी कलीसियाओं में जो कुछ भी सामने आया है उसे साझा करें और उनसे उन सवालों और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की अपील की है जिनका सामना आज परिवार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को सभा के आरंभ में पोप लियो 14वें ने कहा, परिवार में प्यार पर पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतीत्सिया के प्रकाशन के 10 साल बाद अब समय आ गया है कि इस दस्तावेज से जो कुछ भी सामने आया है उसे दुनिया भर की कलीसियाओं को साझा करें ताकि कलीसिया आज जिन चुनौतियों और कमजोरियों का सामना कर रही है उनमें परिवारों का साथ देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत कर सके। उन्होंने सभा के शुरुआती भाषण में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कलीसियाओं और अलग अलग सांस्कृतिक माहौल से जो कहानियां लाते हैं उनसे इन 10 सालों की एक साझा कहानी धीरे धीरे आकार लेगी जो खुशी और उम्मीद से भरी होगी और इससे हम बाकी मुश्किलों एवं परेशानियों का ईमानदारी से सामना कर पाएंगे। पोप लियो ने 19 मार्च 2026 को अमोरिस लेतीत्सिया की 10वीं सालगिरह के मौके पर वैटिकन में पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग का आह्वान किया था। यह कार्यक्रम 7 से 14 अक्टूबर तक पॉल शस्टम सभागार में चल रहा है, जिसमें पूर्ण सत्र, सामूहिक कार्य, प्रार्थना एवं कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। सभा पोप लियो 14वें द्वारा अर्पित ख्रिस्त्याग के साथ समाप्त होगी और इन दिनों में जो सामने आया है उनसे एक सारांश रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पोप ने कहा कि उनके पूर्वाधिकारियों और कलीसिया ने परिवार

एवं विवाह के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जारी रखा। जब महासभा के धर्माचार्यों ने आधुनिक दुनिया में कलीसिया के प्रेरित संविधान गाउडियम एट स्पेस के भीतर विवाह एवं परिवार की गरिमा को रखा, उन्होंने माना कि पारिवारिक जीवन हमारे समय के महान सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों में प्रवेश का एक विशेषाधिकार प्राप्त बिंदु प्रदान करता है, जिसमें लोगों के बीच शांति को बढ़ावा देने का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, आज इन सवालों का एक दूसरे पर निर्भर होना और भी साफ हो गया है। पोप ने समझाया कि परिवार एक ऐसे दृष्टिकोण की कुंजी है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों को एक साथ रखता है और ख्रिस्त में एक विश्वव्यापी भाईचारे की खोज से प्रेरित होता है। इसलिए मीटिंग में एकत्रित हुए लोगों की एक खास जिम्मेदारी है। पोप ने गौर किया कि कलीसिया ने परिवार और विवाह के प्रति अपनी प्रेरित चिंता में जिस रास्ते पर चलना शुरू की है, उसमें अमोरिस लेतिसिया एक अहम पड़ाव है। उन्होंने सभी लोगों को इस दस्तावेज के नतीजे में पिछले 10 सालों में स्थानीय कलीसियाओं के सामने आई कहानियों, नतीजों और सवालों को साझा करने का प्रोत्साहन दिया। इस सभा के लिए 19 मार्च को अपने संदेश में पोप ने इस बात पर जोर दिया था कि असल में ऐसी जगह हैं और हालात हैं जहां कलीसिया सिर्फ लोक धर्मियों और खासकर परिवारों के माध्यम से पृथ्वी के नमक बन सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अमोरिस लेतिसिया हमें इस काम और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित करता है। परिवार खुद अपने जीवन के आम ताने बाने में प्यार और निष्ठा, देखभाल और माफी, बच्चों की पढ़ाई, विश्वास को हस्तांतरित करने की अपनी कोशिशों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर ध्यान देने और कई तरीकों से अपने समुदायों तथा समाज की सेवा करके कलीसिया के मिशन में हिस्सा लेते हैं। इन सभी तरीकों से परिवार सुसमाचार की गवाही देते और कलीसिया के जीवन एवं मिशन में योगदान देते हैं। पोप ने आग्रह किया, पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो हुआ है उसे ध्यान से देखने से हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है कि मसीह इन सालों में अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, और यह भी कहा कि इससे यह देखने में भी मदद मिल सकती है कि उनकी आत्मा आज कलीसिया को कहाँ ले जा रही है। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलाघर 8 से 10 अक्टूबर तक इस्लामाबाद जा रहे हैं। वे वहाँ राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों तथा देश के धर्मदर्शों से मिलेंगे और फैसल मस्जिद जाएंगे। महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड का पाकिस्तान दौरा आज 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और शनिवार 10 अक्टूबर तक चलेगा। महाधर्मदर्श वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। साथ ही वे शांति और सहयोग के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना चाहते हैं। वैटिकन राज्य सचिव के एक्स अकाउंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार महाधर्मदर्श कलाघर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मिलेंगे। वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को अपने दौरे के अंतिम दिन वे इस्लामाबाद में फातिमा की माता मरियम के गिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे फैसल मस्जिद जाएंगे और धार्मिक नेताओं से मिलेंगे। पोप लियो 14वें ने सिस्टर मेरी तेरेस बैरन को सुसमाचार प्रचार विभाग का सहायक सचिव और परमधम पीठे मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अपनी इस नई जिम्मेदारी को 4 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। वे वर्तमान में मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ अपोसल्स के सुपीरियर जनरल हैं। और आज के कार्यक्रम के अनुसार संत पापा लियो 14वें शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए परमधम पीठे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: अमृत को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु येसु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि मानव अधिकार क्या है और ये क्यों अहम है? मानव अधिकार वे मूलभूत और जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या राष्ट्र कोई भी हो। ये अधिकार किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, मनुष्य के जन्म के साथ ही वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, कोई भी सत्ता या सरकार इसे समाप्त नहीं कर सकती। सभी मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक अधिकार को पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग जरूरी होता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समय और समाज की जरूरतों के साथ उनका दायरा बढ़ता है, जैसे डिजिटल युग में निजता का अधिकार। दुनिया भर में टकराव और युद्ध, इंसानों के बीच असमानता और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच मानव अधिकारों की अहमियत पहले से कहीं अधिक हो गई है। लेकिन मानव अधिकार क्या है? वे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह जुड़े हैं और वे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए क्यों आवश्यक है? जिनेवा स्थित यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना श्रमदासानी ने यूएन न्यूज की अंशु शर्मा के साथ एक विशेष बातचीत में उन्हीं बुनियादी सवालों के जवाबों पर रोशनी डालते हुए मानव अधिकारों की मूल अवधारणा, उनके महत्व और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को सरल शब्दों में समझाया।
3: रवीना, सबसे पहले ये बताइए कि मानवाधिकारों का मतलब क्या है? मानवाधिकार है क्या?
4: मानवाधिकार एक्चुअली सब कुछ है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, इक्वालिटी स्कूल्स में, काम पे, डिसेबिलिटी राइट्स, कैसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स नहीं हो लाइफ में कि किसी बिल्डिंग में एंटर करना हो, कोई काम करना हो तो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। कोई अगर कोई जुर्म करता है तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, अभी उसका भी हक है कि ही इज़ ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। टॉर्चर करने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, इनफैक्ट आप वापस वो जो साइकिल होती है वायोलेशंस की वो आप दोहरा रहे हो बार बार। तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स सब कुछ है।
3: मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए हर जगह जी, उसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्यों महत्वपूर्ण है वो
4: मानवाधिकार? एक्चुअली अगर आपको याद होगा कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे हमारी एक थी हंसा मेहता, इंडियन फेमिनिस्ट, जिसने इंसिस्ट किया था कि उसका जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड फ्री एंड इक्वल जो वो फ्रेज है, वो उन्होंने ही डिसाइड किया था कि उसको ऑल ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, ऑल मेन नहीं होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट काफ़ी जो जिसने ये लीड किया था जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उन्होंने बोला था नहीं रहने दो क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स टू पिक, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को कन्विंस करना है, तो ये चीज़ रहने दो, हम लोग ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल से सेटिस्फाइड हैं। पर हंसा मेहता ने इंसिस्ट किया था कि ह्यूमन राइट्स आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, ठीक से लिख के उसको स्पेसिफाई करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तभी लोग पूछते हैं कि चलो ये सोशल इश्यूज़ हैं, इनको आप ह्यूमन राइट्स की फ्रेमवर्क में क्यों बोल रहे हो? और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जब कोई बोलता है कि ये मेरा अधिकार है। तो जैसे 2004 में जब सुनामी हुआ था साउथ एशिया में, तो मैं वहाँ पे गई थी, मैं नागापट्टनम में गई थी, और वहाँ पे काफ़ी चैरिटी वर्क चल रहा था, राइट? काफ़ी लोग सोचेंगे कि चैरिटी वर्क चल रहा है, लोगों जिसके जिनके घर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, उनको रोटी कपड़ा मकान. पर एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, जब मैं एक कैंप में गई थी वहाँ पे लिखा था कि हर परिवार का अधिकार है इतने चावल, इतना आटा, इतनी दाल. दैट कम्प्लीटली चेंजेस द इक्वेशन, क्योंकि फिर लोग ऐसा नहीं है कि वो बेजार हैं, वो जाके कुछ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं. नहीं, ये उनका अधिकार है, ये खाना, ये पानी, ये रहने की जगह उनका अधिकार है. और वो पूरी इक्वेशन को शिफ्ट कर देता है. तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करें.
3: तो आप मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में काम करती हैं जिनेवा में. ये कार्यालय क्या करता है, क्या काम है उसका?
4: तो हम लोग 90+ कंट्रीज़ में हैं, एक्चुअली अभी 92 कंट्रीज़ में हैं. और वहाँ पे हम बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्री. जैसे समझिए सूडान में अभी वहाँ पे वॉर चल रहा है, पर जब भी किसी जंग में दो पार्टीज़ होती हैं तो दो वर्जन्स ऑफ द ट्रूथ होते हैं, दो सच्चाइयाँ होती हैं. और हमारा जॉब है कि हम एक्चुअली क्या सच में हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके और पूरी दुनिया को बताएं कि एक्चुअली ये हो रहा है, जाके डॉक्यूमेंट करके और सबको बताते हो कि क्या हो रहा है. एंड देयर इज नथिंग दैट एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लोग सच्चाई समझेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे वो लोग सच्चाई समझेंगे, तो फिर दैट कैन प्रोवोक एक्शन. फिर जाके दुनिया भर के लोग देखेंगे कि सूडान में ये हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए. वो अपने गवर्नमेंट्स को प्रेशर करेंगे, फिर गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व्ड एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी पेज अटेंशन टू सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड.
3: पर ज़मीन पर जो लोग हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं आप इस सब में?
4: हर देश का अपना इशू है, तो डिपेंडिंग ऑन उनकी लोकली क्या कॉन्टेक्स्ट है. कभी कभी हम लोग जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो लोग एक्चुअली फ़ाइट करते हैं दूसरों के एक ही अधिकार के लिए, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं. उनको हम लोग सिखाते हैं कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे आप यूएन को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं.
3: जब किसी भी देश पर या किसी गुट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद क्या होता है?
4: तो एक बार हमने सच्चाई एस्टैब्लिश कर ली कि एक जगह पर क्या हुआ, तो फिर जवाबदेही का टर्न है और वो काफ़ी रूप ले सकती है. जिस देश में ये जुर्म हुआ था वहाँ पे उसके कोर्ट्स और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो हो नहीं सकता है. तो कभी कभी फिर हम लोग बोलते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है एक जो नैदरलैंड्स में है, कभी कभी वो केसेस ले लेते हैं. पर हर देश में, काफ़ी देशों में एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन. उसका मतलब ये है कि भले ही वो जो जुर्म हुआ था वो आपके देश में नहीं हुआ था, अगर जो परपेट्रेटर है, जो आदमी है जिसने ये किया था, अगर वो आपके देश में है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल उधर ही, उसको जवाबदेही उधर ही कर सकते हो. तो काफ़ी डिफरेंट वेज हैं, काफ़ी तरीके हैं टू इंश्योर जस्टिस.
3: पर क्या संयुक्त राष्ट्र के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो जो भी निर्णय है उनको लागू कर सके, इन्फोर्स कर सके?
4: देखिए, इन्फोर्समेंट काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स लेती है. तो पहले हमारा मेन प्रिंसिपल है कि सच को एस्टैब्लिश करो, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करो. और आप जानते हो कि आजकल ये बहुत मुश्किल चीज़ हो गई. अभी सोशल मीडिया में वीडियोस छप जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन इतनी हो जाती है और फिर पता नहीं चलता है कि ये सच्चे वीडियोस हैं कि इनको कुछ किया गया है, डॉक्टर किया गया है. और लोग देख लेते हैं तो फिर वो व्हाट दे सी दे बिलीव. तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश द ट्रूथ, सच्चाई को आप एस्टैब्लिश कर दो. उसके बाद उसको अटेंशन दिलाओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में. दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. उसी से काफ़ी बदल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन गाज़ा, इसराइल बोलती है कि हमने इस हॉस्पिटल को अटैक किया, हस्पताल को अटैक किया क्योंकि वहाँ पे हमास के मिलिटेंट्स थे. हमास वाले बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मिलिटेंट्स नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स थे और इसराइल ने ऐसा किया. तो हम जाके पूछताछ करते हैं वहाँ पे, हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या. क्योंकि इसराइल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं, हम एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल को हमने ठीक से एग्जामिन किया और हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स का, मतलब कुछ वेपन्स का था ही नहीं. और उस हॉस्पिटल को अटैक करके वहाँ पे जो लोग हैं इन द मिडल ऑफ अ वॉर, उनकी बस उनकी फिर एक्सेस ही नहीं थी किसी भी हस्पताल की, उनके पास एक्सेस नहीं थी. तो जो छोटी मोटी इलनेसेस भी होती हैं, किसको डायबिटीज़ है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको अपनी दवाइयाँ नहीं मिलती है. तो जो टोल ऑफ द वॉर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली वो टारगेट नहीं था. उसके बाद वो सच एस्टैब्लिश करने के बाद जो जवाबदेही होती है वो शुरू हो सकती है.
0: आप
2: मानव अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दासानी के साथ यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा की विशेष बातचीत को सुन रहे थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में स्मरण दिलाया कि मानवीय अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं तथा हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है। इसलिए मनुष्य स्मृति का सहारा ले और अपने यथार्थ अनुभवों को याद करे। अपने ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, मस्तिष्क को केवल डाटा एकत्र नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दिनों एल्गोरिदम हमसे कहीं अधिक तेजी से करते हैं, अपितु उसे अपने जिए हुए अनुभवों को याद करना चाहिए। इन अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें सिर्फ मानवीय आत्मा ही पहचान सकती है और उनसे गहराई से जुड़ सकती है। हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है, इसलिए उसमें एक प्राण, एक गतिशीलता और एक सहभागिता का भाव जुड़ा होता है जो एक बार महसूस होने पर दिल में बस जाता है। संत पापा लियो 14वें 16 से 18 अक्टूबर तक रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन शीर्षक से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संत पापा पॉल षष्ठम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन अर्थात मानवीय वैभव प्रजनन क्षमता की रक्षा और बांझपन का उपचार शीर्षक से रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श हेतु उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन शुक्रवार 16 अक्टूबर को रोम के सांता मरिया इन त्रस्पोंतीना पल्ली के गिरजाघर में बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष तथा इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जूपी की अध्यक्षता में

जीवन का प्रसार, गर्भ धारण से पहले स्वास्थ्य और वंध्यापन की रोकथाम, और साथ ही हाइपर टेक्नोलॉजी और फेंक दी जाने वाली संस्कृति के बीच इंसानियत की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति की बैठक में राष्ट्र संघ में वैटिकन के प्रतिनिधि और परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफी एल कसीस ने नस्लगत हिंसा और भेदभाव को खत्म करने की मांग की। गुरुवार 8 अक्टूबर को नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता की समाप्ति शीर्षक के अंतर्गत आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की उक्त सभा में महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कलीसिया की शिक्षाओं के मूल में यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के प्रतिरूप और उनकी समानता में रचा गया है और इसलिए हर किसी की गरिमा समान और अक्षुण है। उन्होंने कहा, नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया अथवा विदेशियों के प्रति घृणा और इनसे जुड़ी असहिष्णुता मानवीय गरिमा और मानव परिवार की एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। इस संबंध में संत पापा लियो 14वें का आग्रह है कि समानता को नस्ल, रंग, वर्ग और पेशे के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बरकरार रखा जाना चाहिए। महाधर्माध्यक्ष एल कसीस ने याद दिलाया कि ईश प्रदत्त मानवीय गरिमा एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए बुनियादी है, जिसमें सभी की भलाई हासिल की जा सके। उन्होंने सचेत किया कि भौतिकतावादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं इन मूल्यों के खिलाफ हैं और मानव परिवार की एकता को हकीकत बनने से रोकती हैं। इस तथ्य पर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वर्तमान समाज में स्पष्ट दिखाई देती प्रगति के बावजूद नस्लवाद की बुराई अलग अलग रूपों और स्तरों पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नस्लगत भेदभाव इस गलत और घटिया सोच पर आधारित है कि कोई व्यक्ति जिसे केवल एक विशेषता तक सीमित कर दिया गया है दूसरे से श्रेष्ठ है। इस विषय में उन्होंने कहा, विशेष रूप से आप्रवासियों और शरणार्थियों के विरुद्ध बढ़ता अकारण भय और हर स्तर पर उनके विरुद्ध भेदभाव खतरनाक है। फिर डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते भेदभाव और बहिष्करण के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए सचेत किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता के प्रति भी उन्होंने गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह पर आधारित घृणा का हरगिज बहिष्कार किया जाना चाहिए। रोम स्थित अंतोनियानुम परम धर्मपीठ विश्वविद्यालय में बुधवार 7 अक्टूबर को अंतरधार्मिक संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज कुवाकर्ड ने कहा कि युद्ध का क्रिस्तीय प्रत्युत्तर और एकमात्र शांति का मार्ग है भ्रातृत्व भाव। उन्होंने कहा कि शांति का निर्माण करने की क्षमता एक ऐसी मानवता के पास ही होती है जो एक साथ प्रार्थना करती, साथ चलती और सबसे पहले हथियार का परित्याग करती है। 27 अक्टूबर 1986 में इटली के असीसी नगर में संपन्न विश्व के धर्मों की सार्वभौमिक प्रार्थना सभा के स्मरणार्थ तथा संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास से प्रेरित होकर असीसी की भावना में स्मृति और भविष्यवाणी के बीच शीर्षक से उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। कार्डिनल कुवाकर्ड ने स्मरण दिलाया कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने असीसी में प्रार्थना दिवस का आयोजन इसलिए चाहा था कि यह धरती शांति पुरुष संत फ्रांसिस की जन्म और कर्म भूमि थी। उन्होंने कहा कि संत फ्रांसिस के लिए शांति न तो कोई रणनीति थी और न ही कोई विचारधारा, बल्कि यह ईश्वर से मिलने वाला एक उपहार है जिसे हम उन सभी को अर्पित कर सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। उन्होंने याद किया कि असीसी में लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए थे, न कि एक साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने का मतलब मतभेदों को मिटाना नहीं, इसका मतलब है हर कोई अपने अपने विश्वास और धार्मिक परंपराओं में जड़ी भूत रहते हुए यह समझे कि शांति एक ऐसा उपहार है जो हमारे पास नहीं है और जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि मानव अधिकार क्या है और ये क्यों अहम है? मानव अधिकार वे मूलभूत और जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या राष्ट्र कोई भी हो। ये अधिकार किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, मनुष्य के जन्म के साथ ही वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, कोई भी सत्ता या सरकार इसे समाप्त नहीं कर सकती। सभी मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक अधिकार को पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग जरूरी होता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समय और समाज की जरूरतों के साथ उनका दायरा बढ़ता है, जैसे डिजिटल युग में निजता का अधिकार। दुनिया भर में टकराव और युद्ध, इंसानों के बीच असमानता और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच मानव अधिकारों की अहमियत पहले से कहीं अधिक हो गई है। लेकिन मानव अधिकार क्या है? वे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह जुड़े हैं और वे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए क्यों आवश्यक है? जिनेवा स्थित यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना श्रमदासानी ने यूएन न्यूज की अंशु शर्मा के साथ एक विशेष बातचीत में उन्हीं बुनियादी सवालों के जवाबों पर रोशनी डालते हुए मानव अधिकारों की मूल अवधारणा, उनके महत्व और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को सरल शब्दों में समझाया।
3: रवीना, सबसे पहले ये बताइए कि मानवाधिकारों का मतलब क्या है? मानवाधिकार है क्या?
4: मानवाधिकार एक्चुअली सब कुछ है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, इक्वालिटी स्कूल्स में, काम पे, डिसेबिलिटी राइट्स, कैसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स नहीं हो लाइफ में, कि किसी बिल्डिंग में एंटर करना हो, कोई काम करना हो तो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। कोई अगर कोई जुर्म करता है तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, अभी उसका भी हक है कि ही इज़ ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। टॉर्चर करने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, इनफैक्ट आप वापस वो जो साइकिल होती है वायोलेशंस की वो आप दोहरा रहे हो बार बार। तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स सब कुछ है।
3: मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए हर जगह जी, उसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्यों महत्वपूर्ण है वो
4: मानवाधिकार? एक्चुअली अगर आपको याद होगा कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे हमारी एक थी हंसा मेहता, इंडियन फेमिनिस्ट, जिसने इंसिस्ट किया था कि उसका जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड फ्री एंड इक्वल, जो वो फ्रेज है वो उन्होंने ही डिसाइड किया था कि उसको ऑल ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, ऑल मेन नहीं होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट काफ़ी जो जिसने लीड किया था जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया था, उन्होंने बोला था नहीं रहने दो, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स टू पिक, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को कन्विंस करना है, तो ये चीज़ रहने दो, हम लोग ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल से सेटिस्फाइड हैं। पर हंसा मेहता ने इंसिस्ट किया था कि ह्यूमन राइट्स आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, ठीक से लिख के उसको स्पेसिफाई करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तभी लोग पूछते हैं कि चलो ये सोशल इश्यूज़ हैं, इनको आप ह्यूमन राइट्स की फ्रेमवर्क में क्यों बोल रहे हो? और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जब कोई ये बोलता है कि ये मेरा अधिकार है। तो जैसे 2004 में जब सुनामी हुआ था साउथ एशिया में, तो मैं वहाँ पे गई थी, मैं नागापट्टनम में गई थी, और वहाँ पे काफ़ी चैरिटी वर्क चल रहा था, राइट? काफ़ी लोग सोचेंगे कि चैरिटी वर्क चल रहा है, लोगों जिसके जिनके घर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, उनको रोटी कपड़ा मकान. पर एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, जब मैं एक कैंप में गई थी वहाँ पे लिखा था कि हर परिवार का अधिकार है इतने चावल, इतना आटा, इतनी दाल. दैट कम्प्लीटली चेंजेस द इक्वेशन, क्योंकि फिर लोग ऐसा नहीं है कि वो बेजार हैं, वो जाके कुछ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं. नहीं, ये उनका अधिकार है, ये खाना, ये पानी, ये रहने की जगह उनका अधिकार है. और वो पूरी इक्वेशन को शिफ्ट कर देता है. तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करें.
3: तो आप मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में काम करती हैं जिनेवा में, ये कार्यालय क्या करता है, क्या काम है उसका?
4: तो हम लोग 90+ कंट्रीज़ में हैं, एक्चुअली अभी 92 कंट्रीज़ में हैं. और वहाँ पे हम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्री. जैसे समझिए सूडान में अभी वहाँ पे वॉर चल रहा है, पर जब भी किसी जंग में दो पार्टीज होती हैं तो दो वर्जन्स ऑफ द ट्रूथ होते हैं, दो सच्चाइयाँ होती हैं. और हमारा जॉब है कि हम एक्चुअली क्या सच में हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके और पूरी दुनिया को बताएं कि एक्चुअली ये हो रहा है, जाके डॉक्यूमेंट करके और सबको बताते हो कि क्या हो रहा है. एंड देयर इज नथिंग दैट एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लोग सच्चाई समझेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे वो लोग सच्चाई समझेंगे, तो फिर दैट कैन प्रोवोक एक्शन. फिर जाके दुनिया भर के लोग देखेंगे कि सूडान में ये हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए. वो अपने गवर्नमेंट्स को प्रेशर करेंगे, फिर गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व्ड एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी पेज अटेंशन टू सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड.
3: पर ज़मीन पर जो लोग हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं आप इस सब में?
4: हर देश का अपना इशू है, तो डिपेंडिंग ऑन उनकी लोकली क्या कॉन्टेक्स्ट है. कभी कभी हम लोग जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो लोग एक्चुअली फाइट करते हैं दूसरों के एक ही अधिकार के लिए, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं. उनको हम लोग सिखाते हैं कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे आप यूएन को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं.
3: जब किसी भी देश पर या किसी गुट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद क्या होता है?
4: तो एक बार हमने सच्चाई एस्टैब्लिश कर ली कि एक जगह पर क्या हुआ, तो फिर जवाबदेही का टर्न है और वो काफ़ी रूप ले सकती है. जिस देश में ये क्रम हुआ था वहाँ पे उसके कोर्ट्स और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो हो नहीं सकता है. तो कभी कभी फिर हम लोग बोलते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है एक जो नैदरलैंड्स में है, कभी कभी वो केसेस ले लेते हैं. पर हर देश में, काफ़ी देशों में एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन. उसका मतलब ये है कि भले ही वो जो जुर्म हुआ था वो आपके देश में नहीं हुआ था, अगर जो परपेट्रेटर है, जो आदमी है जिसने ये किया था, अगर वो आपके देश में है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल उधर ही, उसको जवाबदेही उधर ही कर सकते हो. तो काफ़ी डिफरेंट वेज हैं, काफ़ी तरीके हैं टू इंश्योर जस्टिस.
3: पर क्या संयुक्त राष्ट्र के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो जो भी निर्णय है उनको लागू कर सके, इन्फोर्स कर सके?
4: देखिए, इन्फोर्समेंट काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स लेती है. तो पहले हमारा मेन प्रिंसिपल है कि सच को एस्टैब्लिश करो, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करो. और आप जानते हो कि आजकल ये बहुत मुश्किल चीज़ हो गई. अभी सोशल मीडिया में वीडियोस छप जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन इतनी हो जाती है और फिर पता नहीं चलता है कि ये सच्चे वीडियोस हैं कि इनको कुछ किया गया है, डॉक्टर किया गया है. और लोग देख लेते हैं तो फिर वो व्हाट दे सी दे बिलीव. तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश द ट्रूथ, सच्चाई को आप एस्टैब्लिश कर दो. उसके बाद उसको अटेंशन दिलाओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में. दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. उसी से काफ़ी बदल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन गाजा, इसराइल बोलती है कि हमने इस हॉस्पिटल को अटैक किया, हस्पताल को अटैक किया, क्योंकि वहाँ पे हमास के मिलिटेंट्स थे. हमास वाले बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मिलिटेंट्स नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स थे और इसराइल ने ऐसा किया. तो हम जाके पूछताछ करते हैं वहाँ पे, हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि इसराइल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं, हम एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल को हमने ठीक से एग्जामिन किया और हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स का, मतलब कुछ वेपन्स का था ही नहीं. और उस हॉस्पिटल को अटैक करके वहाँ पे जो लोग हैं इन द मिडल ऑफ अ वॉर, उनकी बस उनकी फिर एक्सेस ही नहीं थी किसी भी हस्पताल की, उनके पास एक्सेस नहीं थी. तो जो छोटी मोटी इलनेसेस भी होती हैं, किसको डायबिटीज़ है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको अपनी दवाइयाँ नहीं मिलती है. तो जो टोल ऑफ द वॉर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली वो टारगेट नहीं था. उसके बाद वो सच एस्टैब्लिश करने के बाद जो जवाबदेही होती है वो शुरू हो सकती है.
0: आप
2: मानव अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दासानी के साथ यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा की विशेष बातचीत को सुन रहे थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में स्मरण दिलाया कि मानवीय अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं तथा हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है। इसलिए मनुष्य स्मृति का सहारा ले और अपने यथार्थ अनुभवों को याद करे। अपने ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, मस्तिष्क को केवल डाटा एकत्र नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दिनों एल्गोरिदम हमसे कहीं अधिक तेजी से करते हैं, अपितु उसे अपने जिए हुए अनुभवों को याद करना चाहिए। इन अनुभवों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें सिर्फ मानवीय आत्मा ही पहचान सकती है और उनसे गहराई से जुड़ सकती है। हर चीज की शुरुआत आत्मा से होती है, इसलिए उसमें एक प्राण, एक गतिशीलता और एक सहभागिता का भाव जुड़ा होता है जो एक बार महसूस होने पर दिल में बस जाता है। संत पापा लियो 14वें 16 से 18 अक्टूबर तक रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन शीर्षक से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संत पापा पॉल षष्ठम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए द स्प्लेंडर ऑफ द ह्यूमन अर्थात मानवीय वैभव प्रजनन क्षमता की रक्षा और बांझपन का उपचार शीर्षक से रोम के साक्रो क्वोरे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श हेतु उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन शुक्रवार 16 अक्टूबर को रोम के सांता मरिया इन त्रस्पुंतीना पल्ली के गिरजाघर में बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष तथा इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जूपी की अध्यक्षता में अर्पित ख्रीस्तियाग से शुरू होगा। तदुपरांत सम्मेलन के प्रतिभागी वैटिकन में संत पापा लियो 14वें से मुलाकात करेंगे। अपरान रोम के उक्त कैथलिक विश्वविद्यालय में सम्मेलन का पहला सत्र आरंभ होगा, जिसमें वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन कलीसियाई शिक्षा के अनुरूप प्रजनन की गरिमा और उसके सौंदर्य विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का कार्यक्रम 4 सत्रों में विभाजित है। चर्चित विषयों में शामिल है प्रजनन ज्ञान और वंध्यापन का उपचार संबंधी मानव शास्त्रीय और वैज्ञानिक पहलुओं को समझना, समाज और विज्ञान के बीच जीवन का प्रसार, गर्भ धारण से पहले स्वास्थ्य और वंध्यापन की रोकथाम, और साथ ही हाइपर टेक्नोलॉजी और फेंक दी जाने वाली संस्कृति के बीच इंसानियत की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति की बैठक में राष्ट्र संघ में वैटिकन के प्रतिनिधि और परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टफी एल कसीस ने नस्लगत हिंसा और भेदभाव को खत्म करने की मांग की। गुरुवार 8 अक्टूबर को नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता की समाप्ति शीर्षक के अंतर्गत आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की उक्त सभा में महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कलीसिया की शिक्षाओं के मूल में यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के प्रतिरूप और उनकी समानता में रचा गया है और इसलिए हर किसी की गरिमा समान और अक्षुण है। उन्होंने कहा, नस्लवाद, जातिगत भेदभाव, ज़ेनोफोबिया अथवा विदेशियों के प्रति घृणा और इनसे जुड़ी असहिष्णुता मानवीय गरिमा और मानव परिवार की एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। इस संबंध में संत पापा लियो 14वें का आग्रह है कि समानता को नस्ल, रंग, वर्ग और पेशे के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बरकरार रखा जाना चाहिए। महाधर्माध्यक्ष एल कसीस ने याद दिलाया कि ईश प्रदत्त मानवीय गरिमा एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए बुनियादी है, जिसमें सभी की भलाई हासिल की जा सके। उन्होंने सचेत किया कि भौतिकतावादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं इन मूल्यों के खिलाफ हैं और मानव परिवार की एकता को हकीकत बनने से रोकती हैं। इस तथ्य पर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वर्तमान समाज में स्पष्ट दिखाई देती प्रगति के बावजूद नस्लवाद की बुराई अलग अलग रूपों और स्तरों पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नस्लगत भेदभाव इस गलत और घटिया सोच पर आधारित है कि कोई व्यक्ति जिसे केवल एक विशेषता तक सीमित कर दिया गया है दूसरे से श्रेष्ठ है। इस विषय में उन्होंने कहा, विशेष रूप से आप्रवासियों और शरणार्थियों के विरुद्ध बढ़ता अकारण भय और हर स्तर पर उनके विरुद्ध भेदभाव खतरनाक है।
फिर डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते भेदभाव और बहिष्करण के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए सचेत किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता के प्रति भी उन्होंने गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह पर आधारित घृणा का हरगिज बहिष्कार किया जाना चाहिए। रोम स्थित अंतोनियानुम परम धर्मपीठी विश्वविद्यालय में बुधवार 7 अक्टूबर को अंतरधार्मिक संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज कुवाकर्ड ने कहा कि युद्ध का क्रिस्तीय प्रत्युत्तर और एकमात्र शांति का मार्ग है भ्रातृत्व भाव। उन्होंने कहा कि शांति का निर्माण करने की क्षमता एक ऐसी मानवता के पास ही होती है जो एक साथ प्रार्थना करती, साथ चलती और सबसे पहले हथियार का परित्याग करती है। 27 अक्टूबर 1986 में इटली के असीसी नगर में संपन्न विश्व के धर्मों की सार्वभौमिक प्रार्थना सभा के स्मरणार्थ तथा संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मैग्निफिका उमानिटास से प्रेरित होकर असीसी की भावना में स्मृति और भविष्यवाणी के बीच शीर्षक से उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। कार्डिनल कुवाकर्ड ने स्मरण दिलाया कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने असीसी में प्रार्थना दिवस का आयोजन इसलिए चाहा था कि यह धरती शांति पुरुष संत फ्रांसिस की जन्म और कर्म भूमि थी। उन्होंने कहा कि संत फ्रांसिस के लिए शांति न तो कोई रणनीति थी और न ही कोई विचारधारा, बल्कि यह ईश्वर से मिलने वाला एक उपहार है जिसे हम उन सभी को अर्पित कर सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। उन्होंने याद किया कि असीसी में लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए थे, न कि एक साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने का मतलब मतभेदों को मिटाना नहीं, इसका मतलब है हर कोई अपने अपने विश्वास और धार्मिक परंपराओं में जड़ी भूत रहते हुए यह समझे कि शांति एक ऐसा उपहार है जो हमारे पास नहीं है और जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।